ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 26 जून शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान के मौसम अधिकारियों ने पश्चिमी जापान के कुछ हिस्सों में लोगों से भारी वर्षा के कारण संभावित भूस्खलनों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है। जापानी समयानुसार शुक्रवार शाम 6 बजे तक यामागुची, हिरोशिमा और खागावा प्रीफेक्चरों के कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन के संबंध में स्तर 4 की आपात चेतावनी जारी की जा चुकी थी। स्तर 4 चेतावनी का दूसरा सर्वोच्च स्तर है, जिसका अर्थ है कि भूस्खलन का खतरा अत्यंत अधिक है और लोगों को खतरनाक क्षेत्रों से निकल जाना चाहिए। क्षेत्र में वर्षा अग्र के ठहर जाने के कारण शुक्रवार सुबह तक जबरदस्त बारिश हुई। शिज़ुओका प्रीफेक्चर के हामामात्सु शहर में सुबह 11 बजे तक 57 मिलीमीटर प्रति घंटा और नारा प्रीफेक्चर के कुजुगावा में 31 मिलीमीटर प्रति घंटा बारिश हुई। उष्णकटिबंधीय तूफान मेघाला खागोशिमा प्रीफेक्चर स्थित आमामी शहर के पश्चिम में समुद्र से गुजर रहा है। इस बीच एक अन्य उष्णकटिबंधीय तूफान हिगोस के शनिवार को पूर्वी जापान की ओर बढ़ते हुए तट से टकराने की आशंका है। मौसम अधिकारी लोगों से भूस्खलन, बाढ़ और ऊंची लहरों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। जापान सरकार की एक समिति के प्रमुख ने तेज होती भूगर्भीय गतिविधियों के मद्देनजर उत्तरी जापान के निवासियों से भूकंप के प्रति तैयार रहने को कहा है। इससे पहले बुधवार को इवाते प्रीफेक्चर के निकट समुद्र में मैग्नीट्यूड 7.2 का भूकंप आया था, जिसके बाद बृहस्पतिवार को भूकंप अनुसंधान समिति ने एक असाधारण बैठक की। समिति के अनुसार ये भूकंप 1994 में आए मैग्नीट्यूड 7.6 के भूकंप के केंद्र के पश्चिमी किनारे के आसपास आया। समिति अध्यक्ष उबारा खाजुशिगे के अनुसार ये कहना मुश्किल है कि बृहस्पतिवार का भूकंप निकट भविष्य में किसी बड़े भूकंप का कारण बनेगा, लेकिन उनके अनुसार ये कहना गलत नहीं होगा कि भूगर्भीय गतिविधियों से किसी बड़े भूकंप का खतरा धीरे धीरे बढ़ सकता है। जापान सरकार ने सत्ताधारी दलों को प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए की अगले सप्ताह की भारत यात्रा के नए कार्यक्रम की जानकारी दी है, जिसमें अब वे असम की बजाय राजधानी नई दिल्ली का दौरा करेंगी। ताकाइची बुधवार से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी। इसके बारे में सरकार ने नया यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। नए कार्यक्रम के अनुसार वे अब गुवाहाटी की बजाय नई दिल्ली जाएंगी, जहां वे बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप में जापान का अंतिम ग्रुप मैच स्वीडन के साथ 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुआ। जापान ने अपने ग्रुप एफ में दूसरा स्थान हासिल करते हुए नॉकआउट राउंड में जगह बना ली है। जापान ग्रुप एफ में 1 जीत और 2 ड्रॉ के बाद 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। जापान की टीम लगातार तीसरी बार विश्व कप के नॉकआउट राउंड में पहुंची है। अब सोमवार को जापान का सामना ब्राजील से होगा, जिसकी विश्व रैंकिंग 6 है।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहयोगी खाड़ी देशों का समर्थन जुटाने के लिए पश्चिम एशिया का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में चुंगी वसूलने की ईरान की योजना का वे सभी विरोध करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अमरीका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरीन में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों से मुलाकात के बाद रूबियो ने ये टिप्पणियां की। अमरीका और छह खाड़ी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर जल डमरू मध्य के उपयोग के लिए सभी भुगतानों को अस्वीकार कर दिया और जलमार्ग पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। रूबियो ने कहा, मेरे लिए शुल्क और चुंगी एक ही चीज है। अगर आप वहां जाने के लिए किसी को पैसे दे रहे हैं तो चाहे आप इसे शुल्क कहें, चुंगी कहें या दान, ये चुंगी ही है। हम इसे इसी तरह परिभाषित करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए पैसे देने का समर्थन करता हो। भारत में सोना लंबे समय से धन का प्रतीक रहा है और ये संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन सरकार द्वारा आयात शुल्क दुगने से भी अधिक करने के बाद से सोने की खुदरा बिक्री में भारी गिरावट आई है। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से भारत का रुपया कमजोर हो गया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने लोगों से सोना न खरीदने का आह्वान किया था। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। नई दिल्ली में दुकान चला रहे जौहरी विमल मेहता का कहना है कि यह उद्योग के लिए बड़ा झटका है। उनका कहना है, पहले हमारे पास औसतन 20 ग्राहक प्रतिदिन आते थे, लेकिन अब केवल 4 ही आते हैं। हालात बहुत कठिन हैं, हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। पश्चिमी जापान के क्योटो शहर में अच्छे स्वास्थ्य की कामना और बुरी बलाओं से छुटकारा पाने के लिए एक श्राइन में घास से बने विशाल छल्ले से गुजरने की पारंपरिक रस्म का आयोजन किया जा रहा है। चिनोवा कुगुरी नामक ये प्रथा लोगों को साल के प्रथम 6 महीनों में जमा अशुद्धियों को साफ करने में मदद करती है। ये वार्षिक अनुष्ठान जापान भर के श्राइनों में वर्ष के इसी समय आयोजित किया जाता है। क्योटो में खितानो तेम्मांगू श्राइन ने बृहस्पतिवार 25 जून को परिसर में 2 छल्ले लगाए। इसी दिन एक प्राचीन विद्वान सुगावारा नो मिचिजाने का जन्मदिन होता है, जिन्हें विद्या के देवता के रूप में पूजा जाता है। 5 मीटर व्यास वाले बड़े छल्ले को श्राइन के टावर गेट पर स्थापित किया गया। बारिश की परवाह किए बिना लोग छल्ले से होकर गुजरे। मध्यवर्ती जापान के मिए प्रीफेक्चर से आई एक महिला ने बताया कि आखिरकार चिनोवा से गुजरने का उसका सपना पूरा हो गया। उसने कहा कि ये अनुभव विस्मित करने वाला था। लोग मंगलवार तक इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 17वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि अभी या इन दिनों आप क्या कर रहे हैं।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया जापान के नागानो प्रिफेक्चर में तस्वीरें खींचने गई हैं। वहाँ एक ओनसेन यानी गर्म पानी का कुंड है जिसमें बंदर नहाते हैं। घूमते घूमते मिया की मुलाकात एक जापानी दंपति से हुई। वे भी वहाँ पर्यटन के लिए आए थे। सब साथ मिलकर एक सोबा रेस्तरां में खाने गए।
0: तो आइए सुनते हैं 17वें पाठ की बातचीत।
2: お蕎麦3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले जापानी महिला ने सबके लिए सोबा नूडल्स का ऑर्डर दिया।
1: तीन सोबा ले आइए।
0: फिर दुकानदार ने कहा
3: हाय
1: जी।
0: उसके बाद जापानी महिला ने मिया से पूछा
1: जापान में पर्यटन के लिए आई हैं?
0: मिया ने उत्तर दिया
3: मैं
1: फोटोग्राफर हूँ, दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इसलिए जापान घूम रही हूँ।
0: ये सुनकर जापानी पुरुष ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: इतने में दुकानदार सोबा नूडल्स ले आई और मेज पर रखते हुए बोली लीजिए।
0: घूमते फिरते समय दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिले तो अच्छा लगता है ना? आज के पाठ में आप भी दूसरों को अपने बारे में बताने का तरीका सीख सकेंगे।
1: आज का मुख्य वाक्य है यानी जापान घूम रही हूँ। ये वाक्य याद करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आप अभी या इन दिनों क्या कर रहे हैं।
0: इसमें
5: निहोंग
0: का अर्थ है जापान और
5: ड्योको शिते इमास
0: का मतलब है घूम रही हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: ड्योको शिते इमास
1: यानी घूम रही हूँ का ये मतलब भी हो सकता है कि आप अभी घूम रहे हैं या ये भी कि आप इन दिनों घूम रहे हैं। ये वाक्य बनाने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद इमास लगाते हैं।
5: ड्योको सुरु
0: यानी घूमना का ते रूप है
5: ड्योको शिते।
0: इसके बाद जोड़ गया
5: इमास
0: तो बन गया
5: ड्योको शिते इमास।
0: तो अब आप भी सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ड्योको शिते इमास निहों ओ ड्योको शिते इमास।
1: बातचीत में मिया ने कहा निहोन नो कोतो काइगाइनी शोकाई शिते इमास यानी दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इस वाक्य में भी अभी क्या कर रहे हैं ये बताने के तरीके का ही उपयोग हुआ है।
0: इसमें
5: शोकाई शिते इमास
0: यानी बताती हूँ बनाने के लिए
5: शोकाई सुरु
0: यानी बताना के ते रूप
5: शोकाई शिते
0: के बाद जोड़ा गया है
5: इमास।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा है कि वो जापान में क्या कर रहा है।
6: ड्योको देसु का? हाय, आचकोची ड्योको शिते इमास।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने कहा
6: ड्योको देसु का?
0: घूमने आए हैं।
1: यहाँ
5: ड्योको
1: एक संज्ञा है जिसका अर्थ है घूमना फिरना या यात्रा। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा
6: हाय, आचकोची ड्योको शिते इमास।
0: जी यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
1: इस वाक्य में
5: हाय
1: का मतलब है जी और
5: अच्छी
1: का अर्थ है यहाँ वहाँ।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: और अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनने के बाद उत्तर दोहराइए।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आप जापानी भाषा सीख रहे हैं, तो इसे जापानी में कैसे बोलेंगे? जापानी भाषा के लिए शब्द है
5: निहोंगो।
0: सीखना या पढ़ाई करना को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बेंक्यो सुरु,
0: और इसका ते रूप है
5: बेंक्यो शिते।
0: तो कोशिश कीजिए।
6: निहोंगो बेंक्यो शिते इमासु।
1: अब मान लीजिए आपको कहना है कि आप काम कर रहे हैं। काम के लिए जापानी शब्द है
5: शिगोतो।
1: करना है
5: सुरु
1: और इसका ते रूप है
5: शिते।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: शिगोतो शिते इमासु।
0: अब बारी है संबंधित शब्द सीखने की, जिसमें आज हम गिनती करने के एक विशेष तरीके के बारे में बता रहे हैं।
1: इस तरीके का उपयोग ऑर्डर देते समय किया जा सकता है। आमतौर पर जापानी भाषा में एक से पांच तक की गिनती होती है इची, नी, सान, योंग और गो। लेकिन ऑर्डर देते समय इस्तेमाल की जाने वाली गिनती अलग है। आप भी सुन लीजिए एक से पांच तक की गिनती।
0: एक,
5: हितोत्सु।
0: दो,
5: फुतात्सु।
0: तीन,
5: मित्सु।
0: चार,
5: योत्सु।
0: पांच,
5: इत्सु।
1: अब ये गिनती एक बार और सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सु।
0: आज की बातचीत में महिला पर्यटक तीन सोबा नूडल्स ऑर्डर करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कहा
5: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
0: अगर दो ऑर्डर करने हो तो आप क्या बोलेंगे?
5: ओसोबा फुतात्सु ओनेगाई शिमासु।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
7: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
7: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: आज की बातचीत में सोबा नूडल्स का जिक्र था, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें हम बताएंगे सोबा यानी कुट्टू के आटे के नूडल्स के बारे में।
1: सोबा जापान के पारंपरिक और लोकप्रिय नूडल्स हैं। ये कुट्टू के आटे से बनते हैं। इन्हें आप ठंडा भी खा सकते हैं सोया सॉस वाला रसा लगाकर, या फिर गर्म भी खा सकते हैं हल्के जायके वाले सूप में डालकर।
0: जापान में सोबा नूडल्स के रेस्तरां हर जगह मिल जाते हैं। बाजारों में भी इनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं और रेलवे स्टेशनों के आसपास भी।
1: यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा की दुकानें होती हैं, जहाँ यात्री रेलगाड़ी पकड़ने से पहले जल्दी से पेट पूजा कर सकते हैं। दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में मिया हारुसान हाउस के बाकी निवासियों को अपनी यात्रा के बारे में बताएगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 26 जून शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान के मौसम अधिकारियों ने पश्चिमी जापान के कुछ हिस्सों में लोगों से भारी वर्षा के कारण संभावित भूस्खलनों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है। जापानी समयानुसार शुक्रवार शाम 6 बजे तक यामागुची, हिरोशिमा और खागावा प्रीफेक्चरों के कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन के संबंध में स्तर 4 की आपात चेतावनी जारी की जा चुकी थी। स्तर 4 चेतावनी का दूसरा सर्वोच्च स्तर है, जिसका अर्थ है कि भूस्खलन का खतरा अत्यंत अधिक है और लोगों को खतरनाक क्षेत्रों से निकल जाना चाहिए। क्षेत्र में वर्षा अग्र के ठहर जाने के कारण शुक्रवार सुबह तक जबरदस्त बारिश हुई। शिज़ुओका प्रीफेक्चर के हामामात्सु शहर में सुबह 11 बजे तक 57 मिलीमीटर प्रति घंटा और नारा प्रीफेक्चर के कुजुगावा में 31 मिलीमीटर प्रति घंटा बारिश हुई। उष्णकटिबंधीय तूफान मेघाला खागोशिमा प्रीफेक्चर स्थित आमामी शहर के पश्चिम में समुद्र से गुजर रहा है। इस बीच एक अन्य उष्णकटिबंधीय तूफान हिगोस के शनिवार को पूर्वी जापान की ओर बढ़ते हुए तट से टकराने की आशंका है। मौसम अधिकारी लोगों से भूस्खलन, बाढ़ और ऊंची लहरों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। जापान सरकार की एक समिति के प्रमुख ने तेज होती भूगर्भीय गतिविधियों के मद्देनजर उत्तरी जापान के निवासियों से भूकंप के प्रति तैयार रहने को कहा है। इससे पहले बुधवार को इवाते प्रीफेक्चर के निकट समुद्र में मैग्नीट्यूड 7.2 का भूकंप आया था, जिसके बाद बृहस्पतिवार को भूकंप अनुसंधान समिति ने एक असाधारण बैठक की। समिति के अनुसार ये भूकंप 1994 में आए मैग्नीट्यूड 7.6 के भूकंप के केंद्र के पश्चिमी किनारे के आसपास आया। समिति अध्यक्ष ओबारा खाजुशिगे के अनुसार ये कहना मुश्किल है कि बृहस्पतिवार का भूकंप निकट भविष्य में किसी बड़े भूकंप का कारण बनेगा, लेकिन उनके अनुसार ये कहना गलत नहीं होगा कि भूगर्भीय गतिविधियों से किसी बड़े भूकंप का खतरा धीरे धीरे बढ़ सकता है। जापान सरकार ने सत्ताधारी दलों को प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की अगले सप्ताह की भारत यात्रा के नए कार्यक्रम की जानकारी दी है, जिसमें अब वे असम की बजाय राजधानी नई दिल्ली का दौरा करेंगी। ताकाइची बुधवार से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी। इसके बारे में सरकार ने नया यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। नए कार्यक्रम के अनुसार वे अब गुवाहाटी की बजाय नई दिल्ली जाएंगी, जहां वे बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप में जापान का अंतिम ग्रुप मैच स्वीडन के साथ 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुआ। जापान ने अपने ग्रुप एफ में दूसरा स्थान हासिल करते हुए नॉकआउट राउंड में जगह बना ली है। जापान ग्रुप एफ में 1 जीत और 2 ड्रॉ के बाद 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। जापान की टीम लगातार तीसरी बार विश्व कप के नॉकआउट राउंड में पहुंची है। अब सोमवार को जापान का सामना ब्राजील से होगा, जिसकी विश्व रैंकिंग 6 है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहयोगी खाड़ी देशों का समर्थन जुटाने के लिए पश्चिम एशिया का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में चुंगी वसूलने की ईरान की योजना का वे सभी विरोध करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अमरीका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरीन में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों से मुलाकात के बाद रूबियो ने ये टिप्पणियां की। अमरीका और छह खाड़ी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर जल डमरू मध्य के उपयोग के लिए सभी भुगतानों को अस्वीकार कर दिया और जलमार्ग पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। रूबियो ने कहा, मेरे लिए शुल्क और चुंगी एक ही चीज है। अगर आप वहां जाने के लिए किसी को पैसे दे रहे हैं तो चाहे आप इसे शुल्क कहें, चुंगी कहें या दान, ये चुंगी ही है। हम इसे इसी तरह परिभाषित करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए पैसे देने का समर्थन करता हो। भारत में सोना लंबे समय से धन का प्रतीक रहा है और ये संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन सरकार द्वारा आयात शुल्क दुगने से भी अधिक करने के बाद से सोने की खुदरा बिक्री में भारी गिरावट आई है। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से भारत का रुपया कमजोर हो गया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने लोगों से सोना न खरीदने का आह्वान किया था। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। नई दिल्ली में दुकान चला रहे जौहरी विमल मेहता का कहना है कि यह उद्योग के लिए बड़ा झटका है। उनका कहना है, पहले हमारे पास औसतन 20 ग्राहक प्रतिदिन आते थे, लेकिन अब केवल 4 ही आते हैं। हालात बहुत कठिन हैं, हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। पश्चिमी जापान के क्योतो शहर में अच्छे स्वास्थ्य की कामना और बुरी बलाओं से छुटकारा पाने के लिए एक श्राइन में घास से बने विशाल छल्ले से गुजरने की पारंपरिक रस्म का आयोजन किया जा रहा है। चिनोवा कुगुरी नामक ये प्रथा लोगों को साल के प्रथम 6 महीनों में जमा अशुद्धियों को साफ करने में मदद करती है। ये वार्षिक अनुष्ठान जापान भर के श्राइनों में वर्ष के इसी समय आयोजित किया जाता है। क्योतो में खितानो तेम्मांगू श्राइन ने बृहस्पतिवार 25 जून को परिसर में 2 छल्ले लगाए। इसी दिन एक प्राचीन विद्वान सुगावारा नो मिचिजाने का जन्मदिन होता है, जिन्हें विद्या के देवता के रूप में पूजा जाता है। 5 मीटर व्यास वाले बड़े छल्ले को श्राइन के टावर गेट पर स्थापित किया गया। बारिश की परवाह किए बिना लोग छल्ले से होकर गुजरे। मध्यवर्ती जापान के मिए प्रीफेक्चर से आई एक महिला ने बताया कि आखिरकार चिनोवा से गुजरने का उसका सपना पूरा हो गया। उसने कहा कि ये अनुभव विस्मित करने वाला था। लोग मंगलवार तक इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 17वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि अभी या इन दिनों आप क्या कर रहे हैं।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया जापान के नागानो प्रिफेक्चर में तस्वीरें खींचने गई हैं। वहाँ एक ओनसेन यानी गर्म पानी का कुंड है जिसमें बंदर नहाते हैं। घूमते घूमते मिया की मुलाकात एक जापानी दंपति से हुई। वे भी वहाँ पर्यटन के लिए आए थे। सब साथ मिलकर एक सोबा रेस्तरां में खाने गए।
0: तो आइए सुनते हैं 17वें पाठ की बातचीत।
2: お蕎麦3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしい
3: ね。お待たせしました。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले जापानी महिला ने सबके लिए सोबा नूडल्स का ऑर्डर दिया।
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
1: तीन सोबा ले आइए।
0: फिर दुकानदार ने कहा,
3: हाय
1: जी।
0: उसके बाद जापानी महिला ने मिया से पूछा,
2: निहों ए वा कांको देस का?
1: जापान में पर्यटन के लिए आई हैं?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: वतशी वा शशिनका दे निहों नो कोतो ओ काइगाई नी शोकाई शिटेइमासु।
1: मैं फोटोग्राफर हूँ, दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इसलिए जापान घूम रही हूँ।
0: ये सुनकर जापानी पुरुष ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: इतने में दुकानदार सोबा नूडल्स ले आई और मेज पर रखते हुए बोली, लीजिए।
0: घूमते फिरते समय दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिले तो अच्छा लगता है ना? आज के पाठ में आप भी दूसरों को अपने बारे में बताने का तरीका सीख सकेंगे।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: निहों वो ल्योकोस तेमस,
1: यानी जापान घूम रही हूँ। ये वाक्य याद करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आप अभी या इन दिनों क्या कर रहे हैं।
0: इसमें
5: निहों
0: का अर्थ है जापान और
5: ल्योको शिते इमस
0: का मतलब है घूम रही हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: ल्योको शिते इमस
1: यानी घूम रही हूँ का ये मतलब भी हो सकता है कि आप अभी घूम रहे हैं, या ये भी कि आप इन दिनों घूम रहे हैं। ये वाक्य बनाने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद इमास लगाते हैं।
5: ड्योको सुरु
0: यानी घूमना का ते रूप है
5: ड्योको शिते,
0: इसके बाद जुड़ गया
5: इमास
0: तो बन गया
5: ड्योको शिते इमास।
0: तो अब आप भी सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ड्योको शिते इमास, निहों वो ड्योको शिते इमास।
1: बातचीत में मिया ने कहा, निहोन नो कोतो काइगाई नी शोकाई शिते इमास, यानी दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इस वाक्य में भी अभी क्या कर रहे हैं ये बताने के

0: तरीके का ही उपयोग हुआ है।
1: इसमें
2: शोकाई शिटेइमासु
1: यानी बताती हूँ बनाने के लिए,
2: शोकाई सुरु
1: यानी बताना के ते रूप,
2: शोकाई शिटे
1: के बाद जोड़ा गया है
2: इमासु।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा है कि वो जापान में क्या कर रहा है।
3: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने कहा
3: ryokou desu ka?
1: घूमने आए हैं।
0: यहाँ
2: ryokou
0: एक संज्ञा है जिसका अर्थ है घूमना फिरना या यात्रा। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा
3: हाय आचकोचि ryokou shite imasu।
1: जी, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
0: इस वाक्य में
2: हाय
0: का मतलब है जी और
2: आचकोचि
0: का अर्थ है यहाँ वहाँ।
1: तो सुनिए और दोहराइए
2: ryokou shite imasu आचकोचि ryokou shite imasu।
0: और अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनने के बाद उत्तर दोहराइए।
2: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आप जापानी भाषा सीख रहे हैं, तो इसे जापानी में कैसे बोलेंगे? जापानी भाषा के लिए शब्द है
2: निहोंगो।
1: सीखना या पढ़ाई करना को जापानी भाषा में कहते हैं
2: बेंक्यो सुरु,
1: और इसका ते रूप है
2: बेंक्यो शिते।
1: तो कोशिश कीजिए
3: निहोंगो बेंक्यो शिते इमासु।
0: अब मान लीजिए आपको कहना है कि आप काम कर रहे हैं। काम के लिए जापानी शब्द है
2: शिगोतो।
0: करना है
2: सुरु
0: और इसका ते रूप है
2: शिते।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: शिगोतो शिते इमासु।
1: अब बारी है संबंधित शब्द सीखने की, जिसमें आज हम गिनती करने के एक विशेष तरीके के बारे में बता रहे हैं।
0: इस तरीके का उपयोग ऑर्डर देते समय किया जा सकता है। आमतौर पर जापानी भाषा में एक से पांच तक की गिनती होती है इची, नी, सान, योंग और गो। लेकिन ऑर्डर देते समय इस्तेमाल की जाने वाली गिनती अलग है। आप भी सुन लीजिए एक से पांच तक की गिनती।
1: एक
2: हितोत्सु,
1: दो
2: फुतात्सु,
1: तीन
2: मित्सु,
1: चार
2: योत्सु,
1: पांच
2: इत्सु।
0: अब ये गिनती एक बार और सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
2: हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सु।
1: आज की बातचीत में महिला पर्यटक तीन सोबा नूडल्स ऑर्डर करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कहा
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
1: अगर दो ऑर्डर करने हो तो आप क्या बोलेंगे?
2: ओसोबा फुतात्सु ओनेगाई शिमासु।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
5: हाय।
4: निहों ए वा कांकों देसु का?
5: वाताशी वा शशिनका दे 日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: आज की बातचीत में सोबा नूडल्स का जिक्र था, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंश काइटो के साथ खाना पीना, जिसमें हम बताएंगे सोबा यानी कुट्टू के आटे के नूडल्स के बारे में।
0: सोबा जापान के पारंपरिक और लोकप्रिय नूडल्स हैं। ये कुट्टू के आटे से बनते हैं। इन्हें आप ठंडा भी खा सकते हैं सोया सॉस वाला रसा लगाकर, या फिर गर्म भी खा सकते हैं हल्के जायके वाले सूप में डालकर।
1: जापान में सोबा नूडल्स के रेस्तरां हर जगह मिल जाते हैं। बाजारों में भी इनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं और रेलवे स्टेशनों के आसपास भी।
0: यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा की दुकानें होती हैं, जहाँ यात्री रेलगाड़ी पकड़ने से पहले जल्दी से पेट पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में मिया हारुसान हाउस के बाकी निवासियों को अपनी यात्रा के बारे में बताएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 26 जून शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार।

जापान के मौसम अधिकारियों ने पश्चिमी जापान के कुछ हिस्सों में लोगों से भारी वर्षा के कारण संभावित भूस्खलनों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है। जापानी समयानुसार शुक्रवार शाम 6 बजे तक यामागुची, हिरोशिमा और खागावा प्रीफेक्चरों के कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन के संबंध में स्तर 4 की आपात चेतावनी जारी की जा चुकी थी। स्तर 4 चेतावनी का दूसरा सर्वोच्च स्तर है, जिसका अर्थ है कि भूस्खलन का खतरा अत्यंत अधिक है और लोगों को खतरनाक क्षेत्रों से निकल जाना चाहिए। क्षेत्र में वर्षा अग्र के ठहर जाने के कारण शुक्रवार सुबह तक जबरदस्त बारिश हुई। शिज़ुओका प्रीफेक्चर के हामामात्सु शहर में सुबह 11 बजे तक 57 मिलीमीटर प्रति घंटा और नारा प्रीफेक्चर के कुज़ुगावा में 31 मिलीमीटर प्रति घंटा बारिश हुई। उष्णकटिबंधीय तूफान मेघाला खागोशिमा प्रीफेक्चर स्थित अमामी शहर के पश्चिम में समुद्र से गुजर रहा है। इस बीच एक अन्य उष्णकटिबंधीय तूफान हिगोस के शनिवार को पूर्वी जापान की ओर बढ़ते हुए तट से टकराने की आशंका है। मौसम अधिकारी लोगों से भूस्खलन, बाढ़ और ऊंची लहरों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। जापान सरकार की एक समिति के प्रमुख ने तेज होती भूगर्भीय गतिविधियों के मद्देनजर उत्तरी जापान के निवासियों से भूकंप के प्रति तैयार रहने को कहा है। इससे पहले बुधवार को इवाते प्रीफेक्चर के निकट समुद्र में मैग्नीट्यूड 7.2 का भूकंप आया था, जिसके बाद बृहस्पतिवार को भूकंप अनुसंधान समिति ने एक असाधारण बैठक की। समिति के अनुसार ये भूकंप 1994 में आए मैग्नीट्यूड 7.6 के भूकंप के केंद्र के पश्चिमी किनारे के आसपास आया। समिति अध्यक्ष ओबारा खाजुशिगे के अनुसार ये कहना मुश्किल है कि बृहस्पतिवार का भूकंप निकट भविष्य में किसी बड़े भूकंप का कारण बनेगा, लेकिन उनके अनुसार ये कहना गलत नहीं होगा कि भूगर्भीय गतिविधियों से किसी बड़े भूकंप का खतरा धीरे धीरे बढ़ सकता है। जापान सरकार ने सत्ताधारी दलों को प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई की अगले सप्ताह की भारत यात्रा के नए कार्यक्रम की जानकारी दी है, जिसमें अब वे असम की बजाय राजधानी नई दिल्ली का दौरा करेंगी। ताकाइची बुधवार से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी। इसके बारे में सरकार ने नया यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। नए कार्यक्रम के अनुसार वे अब गुवाहाटी की बजाय नई दिल्ली जाएंगी, जहां वे बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप में जापान का अंतिम ग्रुप मैच स्वीडन के साथ 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुआ। जापान ने अपने ग्रुप एफ में दूसरा स्थान हासिल करते हुए नॉकआउट राउंड में जगह बना ली है। जापान ग्रुप एफ में 1 जीत और 2 ड्रॉ के बाद 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। जापान की टीम लगातार तीसरी बार विश्व कप के नॉकआउट राउंड में पहुंची है। अब सोमवार को जापान का सामना ब्राजील से होगा, जिसकी विश्व रैंकिंग 6 है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहयोगी खाड़ी देशों का समर्थन जुटाने के लिए पश्चिम एशिया का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में चुंगी वसूलने की ईरान की योजना का वे सभी विरोध करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अमरीका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरीन में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों से मुलाकात के बाद रूबियो ने ये टिप्पणियां की। अमरीका और छह खाड़ी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर जल डमरू मध्य के उपयोग के लिए सभी भुगतानों को अस्वीकार कर दिया और जलमार्ग पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। रूबियो ने कहा, मेरे लिए शुल्क और चुंगी एक ही चीज है। अगर आप वहां जाने के लिए किसी को पैसे दे रहे हैं तो चाहे आप इसे शुल्क कहें, चुंगी कहें या दान, ये चुंगी ही है। हम इसे इसी तरह परिभाषित करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो जल डमरू मध्य से

0: गुजरने के लिए पैसे देने का समर्थन करता हो। भारत में सोना लंबे समय से धन का प्रतीक रहा है और ये संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन सरकार द्वारा आयात शुल्क दुगने से भी अधिक करने के बाद से सोने की खुदरा बिक्री में भारी गिरावट आई है। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से भारत का रुपया कमजोर हो गया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने लोगों से सोना न खरीदने का आह्वान किया था। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। नई दिल्ली में दुकान चला रहे जौहरी विमल मेहता का कहना है कि यह उद्योग के लिए बड़ा झटका है। उनका कहना है, पहले हमारे पास औसतन 20 ग्राहक प्रतिदिन आते थे, लेकिन अब केवल 4 ही आते हैं। हालात बहुत कठिन हैं, हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। पश्चिमी जापान के क्योटो शहर में अच्छे स्वास्थ्य की कामना और बुरी बलाओं से छुटकारा पाने के लिए एक श्राइन में घास से बने विशाल छल्ले से गुजरने की पारंपरिक रस्म का आयोजन किया जा रहा है। चिनोवा कुगुरी नामक ये प्रथा लोगों को साल के प्रथम 6 महीनों में जमा अशुद्धियों को साफ करने में मदद करती है। ये वार्षिक अनुष्ठान जापान भर के श्राइनों में वर्ष के इसी समय आयोजित किया जाता है। क्योटो में खितानो तेम्मांगू श्राइन ने बृहस्पतिवार 25 जून को परिसर में 2 छल्ले लगाए। इसी दिन एक प्राचीन विद्वान सुगावारा नो मिचिजाने का जन्मदिन होता है, जिन्हें विद्या के देवता के रूप में पूजा जाता है। 5 मीटर व्यास वाले बड़े छल्ले को श्राइन के टावर गेट पर स्थापित किया गया। बारिश की परवाह किए बिना लोग छल्ले से होकर गुजरे। मध्यवर्ती जापान के मिए प्रीफेक्चर से आई एक महिला ने बताया कि आखिरकार चिनोवा से गुजरने का उसका सपना पूरा हो गया। उसने कहा कि ये अनुभव विस्मित करने वाला था। लोग मंगलवार तक इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 17वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि अभी या इन दिनों आप क्या कर रहे हैं।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया जापान के नागानो प्रिफेक्चर में तस्वीरें खींचने गई हैं। वहाँ एक ओनसेन यानी गर्म पानी का कुंड है जिसमें बंदर नहाते हैं। घूमते घूमते मिया की मुलाकात एक जापानी दंपति से हुई। वे भी वहाँ पर्यटन के लिए आए थे। सब साथ मिलकर एक सोबा रेस्तरां में खाने गए।
0: तो आइए सुनते हैं 17वें पाठ की बातचीत।
2: おそば3つお願いします。はい。日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
3: それは素晴らしいね。
2: お待たせしました。

0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले जापानी महिला ने सबके लिए सोबा नूडल्स का ऑर्डर दिया।
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
0: तीन सोबा ले आइए।
1: फिर दुकानदार ने कहा,
3: हाय।
0: जी।
1: उसके बाद जापानी महिला ने मिया से पूछा,
2: निहों ए वा कांको देसु का?
0: जापान में पर्यटन के लिए आई हैं।
1: मिया ने उत्तर दिया,
3: वतशी वा शशिनका दे निहों नो कोतो काइगाई नी शोकाई शिटेमासु।
0: मैं फोटोग्राफर हूँ, दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ।
3: それで日本を旅行しています。
0: इसलिए जापान घूम रही हूँ।
1: ये सुनकर जापानी पुरुष ने कहा,
4: それは素晴らしいね。
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: इतने में दुकानदार सोबा नूडल्स ले आई और मेज पर रखते हुए बोली,
3: お待たせしました。
0: लीजिए।
1: घूमते फिरते समय दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिले तो अच्छा लगता है ना? आज के पाठ में आप भी दूसरों को अपने बारे में बताने का तरीका सीख सकेंगे।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निहों वो ल्योको शिटेमास,
0: यानी जापान घूम रही हूँ। ये वाक्य याद करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आप अभी या इन दिनों क्या कर रहे हैं।
1: इसमें
5: निहों
1: का अर्थ है जापान और
5: ड्योको शिटेमास
1: का मतलब है घूम रही हूँ।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: ड्योको शिटेमास
0: यानी घूम रही हूँ का ये मतलब भी हो सकता है कि आप अभी घूम रहे हैं, या ये भी कि आप इन दिनों घूम रहे हैं। ये वाक्य बनाने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद इमास लगाते हैं।
5: ड्योको सुरु
1: यानी घूमना का ते रूप है
5: ड्योको शिते,
1: इसके बाद जोड़ गया
5: इमास
1: तो बन गया
5: ड्योको शिते इमास।
1: तो अब आप भी सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ड्योको शिते इमास, निहों वो ड्योको शिते इमास।
0: बातचीत में मिया ने कहा, निहोन नो कोतो काइगाई नी शोकाई शिटेमास, यानी दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इस वाक्य में भी अभी क्या कर रहे हैं ये बताने के तरीके का ही उपयोग हुआ है।
1: इसमें
5: शोकाई शिटेमास
1: यानी बताती हूँ बनाने के लिए
5: शोकाई सुरु
1: यानी बताना के ते रूप
5: शोकाई शिते
1: के बाद जोड़ा गया है
5: इमास।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा है कि वो जापान में क्या कर रहा है।
6: ड्योकोउ देसु का? हाय, आचकोची ड्योकोउ शिटेमासु।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने कहा,
6: ड्योकोउ देसु का?
1: घूमने आए हैं।
0: यहाँ
5: ड्योको
0: एक संज्ञा है जिसका अर्थ है घूमना फिरना या यात्रा। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
6: हाय, आचकोची ड्योको शिटेमास।
1: जी, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
0: इस वाक्य में
5: हाय
0: का मतलब है जी और
5: आचकोची
0: का अर्थ है यहाँ वहाँ।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: ड्योको शिटेमास, आचकोची ड्योको शिटेमास।
0: और अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनने के बाद उत्तर दोहराइए।
5: ड्योको देसु का? हाय, आचकोची ड्योको शिटेमास।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आप जापानी भाषा सीख रहे हैं, तो इसे जापानी में कैसे बोलेंगे? जापानी भाषा के लिए शब्द है
5: निहोंगो।
1: सीखना या पढ़ाई करना को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बेंक्यो सुरु,
1: और इसका ते रूप है
5: बेंक्यो शिते।
1: तो कोशिश कीजिए।
6: निहोंगो बेंक्यो शिटेमासु।
0: अब मान लीजिए आपको कहना है कि आप काम कर रहे हैं। काम के लिए जापानी शब्द है
5: शिगोतो।
0: करना है
5: する
0: और इसका ते रूप है
5: して
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए
3: 仕事をしています
1: अब बारी है संबंधित शब्द सीखने की जिसमें आज हम गिनती करने के एक विशेष तरीके के बारे में बता रहे हैं
0: इस तरीके का उपयोग ऑर्डर देते समय किया जा सकता है आमतौर पर जापानी भाषा में एक से पांच तक की गिनती होती है इची नी सान योंग और गो लेकिन ऑर्डर देते समय इस्तेमाल की जाने वाली गिनती अलग है आप भी सुन लीजिए एक से पांच तक की गिनती
1: एक
5: हितोत्स
1: दो
5: फुतात्स
1: तीन
5: मित्स
1: चार
5: योत्स
1: पांच
5: इचुत्स
0: अब ये गिनती एक बार और सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए
5: हितोत्स फुतात्स मित्स योत्स इचुत्स
1: आज की बातचीत में महिला पर्यटक तीन सोबा नूडल्स ऑर्डर करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कहा
5: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमस
1: अगर दो ऑर्डर करने हो तो आप क्या बोलेंगे
5: ओसोबा फुतात्सु ओनेगाई शिमस
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमस
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: आज की बातचीत में सोबा नूडल्स का जिक्र था इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना जिसमें हम बताएंगे सोबा यानी कुट्टू के आटे के नूडल्स के बारे में
0: सोबा जापान के पारंपरिक और लोकप्रिय नूडल्स हैं ये कुट्टू के आटे से बनते हैं इन्हें आप ठंडा भी खा सकते हैं सोया सॉस वाला रसा लगाकर या फिर गर्म भी खा सकते हैं हल्के जायके वाले सूप में डालकर
1: जापान में सोबा नूडल्स के रेस्तरां हर जगह मिल जाते हैं बाजारों में भी इनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं और रेलवे स्टेशनों के आसपास भी
0: यहां तक कि रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा की दुकानें होती हैं जहां यात्री रेलगाड़ी पकड़ने से पहले जल्दी से पेट पूजा कर सकते हैं दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा
1: अगले पाठ में मिया हारुसान हाउस के बाकी निवासियों को अपनी यात्रा के बारे में बताएगी तब तक के लिए
0: सायोनारा

ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाअत फरमाइए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो खलीजी इत्तेहादियों की हिमायत बढ़ाने के लिए मशरक वस्ती का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को कहा कि वो सब आबनाए हुर्मुज़ में टोल वसूल करने के ईरानी मंसूबे के मुखालिफ हैं और मुतनब्बह किया कि अमरीका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रूबियो ने यह बात बहरीन में खलीज तआवुन कौंसिल के अरकान से मुलाकात के बाद कही। अमरीका और 6 खलीजी ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें इस आबनाए के इस्तेमाल के लिए तमाम किस्म की अदायगियों और इस आबी रास्ते पर कंट्रोल के दावों को मुस्तरद किया गया है। रूबियो ने कहा, मेरे लिए फीस और टोल एक ही चीज़ हैं। ठीक है, अगर आप किसी को वहां जाने के लिए पैसे दे रहे हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे फीस कहें या टोल या चंदा, ये टोल है। हम इसकी इसी तरह तारीफ करेंगे, ये बैनुल अक्वामी आबी रास्ते

0: नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता माह लोगों से सोना खरीदना बंद करने की अपील की थी। हुकूमत ने इस पर दरामदी टैरिफ भी 6 से बढ़ाकर 15% कर दिया है। नई दिल्ली में जेवरात की एक दुकान के मालिक बिमल मेहता का कहना है कि ये सनद के लिए एक बड़ा धचका है। वो कहते हैं, हमारे पास एक दिन में औसतन 20 ग्राहक आया करते थे, लेकिन अब सिर्फ 4 आते हैं। ये बहुत मुश्किल है। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। मगरबी जापान के शहर क्योतो में वाके एक इबादतगाह में लोग अच्छी सेहत की दुआ और बदरूहों को भगाने के लिए घास फूस के एक बड़े रिंग से गुजरने की रिवायती रस्म अदा कर रहे हैं। चिनोवा कुगुरी कहलाने वाला ये अमल लोगों को साल के पहले निसफ के दौरान जमा होने वाली निजासतों से खुद को साफ करने में मदद के लिए तरतीब दिया गया है। ये सालाना रस्म साल के इन दिनों में जापान भर की इबादतगाहों में मुनक्किद की जाती है। क्योतो में वाके कितानो तेम्मांगू इबादतगाह के इहाते में जुमेरात को 2 रिंग लगाए गए। 25 जून का ये दिन सुगावारा नोमिचिजाने का योम पैदाइश है। इस कदीम स्कॉलर को इल्म के देवता के तौर पर पूजा जाता है। 5 मीटर के बड़े रिंग को इबादतगाह के गेट पर नसब किया गया था। जायरीन बारिश को बर्दाश्त करते हुए रिंग में दाखिल हुए। वस्ती जापान के मिए प्रीफेक्चर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने कहा कि उसने चिनोवा में कदम रखने का अपना ख्वाब आखिरकार पूरा कर ही लिया। उसने मजीद कहा कि वो इस तजर्बे से बहुत मुतासर हुई हैं। जायरीन मंगल तक इस रस्म में शिरकत कर सकते हैं।
1: और सामीन, आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान के मौसमियाती हुकाम ने मगरबी जापान के कुछ हिस्सों में लोगों पर जोर दिया है कि वो मूसलाधार बारिश के नतीजे में मुमकिना लैंड स्लाइडिंग के खिलाफ इजाफी एहतियात करें। जापानी वजीर आजम ताकायची सनाए अगले हफ्ते भारत के मुजवजा दौरे में शिमाल मशरकी रियासत आसाम के एक शहर की जगह दारुल हुकूमत नई दिल्ली जाएंगी। और मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में जापान नाक आउट मरहले में पहुंच गया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

0: बावर्ची सोबा तैयार कर रहा था। जैसे ही सोबा तैयार हुए, वेटर्स उन्हें मेज पर लाई और कहा,
1: ओमोतासे शिमाशिता।
2: इंतजार के लिए माजरत, ये लीजिए।
0: सफर के दौरान मिलने वाले लोगों से गुफ्तगु करना वाकई दिलचस्प होता है।
2: बिल्कुल, और आज के मकालमे को इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने बारे में बताया जा सकता है। इस तरह गुफ्तगु को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मैं जापान का सफर कर रहा हूँ। अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं।
2: निहोन के मायने तो आपको याद ही होंगे जापान, और ryoko shiteimas यानी सफर कर रहा हूँ। आज का नुक्ता, ryoko shiteimas यानी सफर कर रहा हूँ, हालिया जारी काम के बारे में बताने के लिए फेल की तेशकल के बाद इमस लगाया जाएगा। ryoko suru यानी सफर करना की तेशकल है, ryoko shite इसके बाद इमस लगाने से ये बनेगा ryoko shiteimas।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए। आज के मकालमे का एक जुमला निहोनो को तो खाई गई नी शोका इश्तेमास यानी मैं जापान को बैरून मुल्क मुतारिफ करवा रही हूँ भी इसी अंदाज का जुमला है, जिसके जरिए अपनी हालिया सरगर्मियों के बारे में बताया जा सकता है।
2: जी हाँ, शोका इश्तेमास यानी मुतारिफ करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ। दरअसल फेल शोकाई सुरु यानी मुतारिफ करवाना की ते शक्ल शोका इश्ते के बाद इमास लगाकर बनाया गया है। अब जापान में अपनी सरगर्मियों के बारे में बताने वाला एक मकालमा सुनिए।
3: ryoko desu ka? Hai. Achikochi ryoko shite imasu.
2: और अब मकालमे की तशरीह।
3: ryoko desu ka?
0: क्या आप सफर कर रहे हैं?
2: ryoko एक इस्म है जिसके मायने है सैयाहती या तफरीही सफर।
3: Hai. Achikochi ryoko shite imasu.
0: जी हाँ, इधर उधर सफर कर रहा हूँ।
2: हाई यानी जी हाँ, और अच्छी कोची के मायने है इधर उधर।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
4: ryoko shite imasu. Achikochi ryoko shite imasu.
0: सामीन अब मुकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
4: ryoko desu ka? Hai. Achikochi ryoko shite imasu. Hai. あちこち旅行しています。
2: आप जापान में मजीद जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बताने की मशक कीजिए। मसलन आप जापानी जबान सीख रहे हैं तो ये बात आप कैसे बताएंगे? जापानी जबान को कहते हैं
4: निहोंगो। निहोंगो
2: सीखना की जापानी है बेंक्यो सुरु, और उसकी ते शक्ल है
4: बेंक्यो शिते। बेंक्यो शिते
3: निहोंगो बेंक्यो शिटेमास। निहोंगो बेंक्यो शिटेमास।
2: और अगर आप काम कर रहे हो तो कैसे बताएंगे? काम को जापानी में कहते हैं
4: शिगोतो। शिगोतो
2: करना की जापानी है सुरु, और इसकी ते शक्ल है
4: शिटे। शिटे
2: तो सामीन कोशिश करें।
5: शिगोतो शिटेमास। शिगोतो शिटेमास।
2: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम गिनती का एक खुसूसी तरीका बता रहे हैं।
0: जापान में कोई चीज ऑर्डर करते वक्त आम गिनती यानी इची नी सान इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये गिनती इस्तेमाल होती है
2: एक, हितोत्सु, दो, फ्तात्सु, तीन, मित्सु, चार, योत्सु, पांच, इत्सुत्सु।
0: एक से पांच तक ये गिनती दोबारा सुनिए और दोहराइए।
4: हितोत्सु, फ्तात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु।
2: आज के मकालमे में सयाह जोड़े की खातून ने तीन अफराद के लिए सोबा नूडल्स का यूं ऑर्डर दिया था, ओ सोबा मित्सु ओ नेगाई शिमास। अगर आप दो सोबा मंगवाना चाहें तो किस तरह कहेंगे?
4: ओसोबा फुतात्सु ओ नेगाई शिमास।
0: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
2: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए।
6: ओसोबा मित्सु ओ नेगाई शिमास।
7: हाय,
6: निहोन हे वा कानको देसु का?
7: एतो
1: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
8: お待たせしました。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: アラブカーニクショキンカイトケマシュルンカカーナーアシカモズソバヘ。
2: ソバジャパンケマクボルリバイティカナヘ。ソバヌードルスやガンドムケアテセテヤキエジャテヘ。イネウバーカーソヤソースワレテンデスープンデボーカーヤーケザヘワリガンヤニケペアリメダルカカヤジャテヘ。ウセヘラジャパンアカアプリソバヌードルスとヤキニンカイオンゲ。
0: ジヤキニン。テンプラヴァリソバヌードルスムジボハッパサンデ。वैसे जापान में जगह जगह सोबा रेस्टोरेंट पाए जाते हैं। तकरीबन हर शॉपिंग मॉल में कई होते हैं। इसके अलावा ये अक्सर ट्रेन स्टेशनों के करीब भी होते हैं,
2: बल्कि कई रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा रेस्टोरेंट होते हैं, जहां मुसाफिर ट्रेन के इंतजार के दौरान सोबा खा सकते हैं।
0: अच्छा अनवर साहब, सोबा के हवाले से एक बात बहुत हैरत अंगेज है।
2: अच्छा वो क्या?
0: जापानी लोग सुड़प सुड़प की आवाज़ के साथ सोबा नूडल्स को मुँह में खींचते हैं। अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, लेकिन शुरू में मुझे आवाज़ बहुत अजीब लगती थी।
2: जी ये बात अक्सर गैर मुल्कियों को अजीब लगती है, लेकिन जापान में सोबा खाने का यही दुरुस्त अंदाज है। दरअसल इस तरह खींचने से नूडल्स के साथ कुछ हवा भी मुंह के अंदर दाखिल होती है, जिससे सोबा के जायके के साथ साथ इसकी खुशबू से भी ज्यादा लुत्फंदोज हुआ जा सकता है।
0: अच्छा तो फिर अगली बार मैं भी इसी तरह खाने की कोशिश करूंगी।
2: मियां जिस इलाके में गई थी वो इलाका यानी नागानो प्रीफेक्चर सोबा की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद इलाका है। ये सतह समंदर से बुलंद ठंडा इलाका है। वहाँ कई सोबा रेस्तरां कदीम अंदाज के घरों में है, जिससे एक रिवायती सा तासुर पैदा होता है। बाज़ रेस्तरानों में करीबी देहातों में रहायश पज़ीर बुजुर्गों के हाथ से तैयार करदा सोबा नूडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कई रेस्तरान शहरी इलाकों से वहाँ आने वाले अफराद चला रहे हैं। नूडल्स की तैयारी के लिए अज्जा और पानी का इंतखाब इंतहाई एहतियात के साथ किया जाता है। हर रेस्तरान का सोबा बनाने का अपना मुनफरद तरीका है। अगर आपको उस इलाके में जाने का मौका मिले तो मुख्तलिफ रेस्तरानों के सोबा से लुत्फ़अंदोज़ होना एक अच्छा तजर्बा होगा।